थोड़ी आप ही करना पियो कला पे ही तारी है, देखे कि अपना दर कची पकी सारी है, जो आया सो चलसी सबको आई वारी है, जिसके जी प्राण है के उस आई मनोवे सारी है, अपन हती अपना आपे ही का सवारी है।

0: लगा सो प्रवान महला दूजा जो जी होए सो उगवै मोहका कहया वाओ बीजै बिख मंगे अमृत वेखो इहो न्याय महला दूजा
1: नाल इयाणे दोस्ती कदे ना वै रास जिहा जाने तिहो वरतै वेखो को निरदास

सर्वनाम कथय कवन कर्म नाम वर्णत सुमत जे सतगुर सिमरंत नयन के तिमर मिटह खेन जे सतगुर

जो सतगुर सरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तिन तुर मस।

अब हम चली ठाकुर पहार, जब हम शरण प्रभु की आई, राख प्रभु पावे मार। लोकन की चतुराई उपमा, ती बैसंत्र जार। कोई भला कहो पावे बुरा कहो, अमतन दियो है ठार।

0: जाए त्रंदा महला पहला।
1: मांस खाने करने बाद श्री व्रत का तिनकर ब्राह्मण पुरे रात ना प्यायो साथ कूड़ी रात कूड़ा व्यापार कूड़ बोल करे हार शर्म तन का डेरा दूर नान कूड़ा भरपूर मथे टिका तेर तो टीका खाए हाथ छुरी जतक साई निर्बस रह प्राम ले ताले पूजे प्राण अपाख्या का कुठा बकरा खाना चौके प्रक से ना जाना देखे चौका कड़ी कार उपराए पेठे कुड़िया
0: मात पिटाए वे मात पिटाए वान साड़ा पिटे तन पिटे फेड़ करे न मन जुटे चली प्रेम कहो नानक सच ते आई है
1: सुच होवे ता सच पाए।